0: राज कपूर और शैलेंद्र के बीच अल्फाजों का रिश्ता था। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, सुनसान मगर अनजान नगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ। मनोज जी, राज कपूर की जिस इमेज के हम सब कायल हैं और हम जिस बारे में बात कर रहे थे, उसे गढ़ने में शैलेंद्र जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और आप बात कर रहे थे फिल्म श्री 420 की और गाने की मेरा जूता है जापानी, तो आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं और आप हमें बता रहे थे उस गाने के बारे में।
1: हाँ नहीं, हम इतना ही कहना चाह रहे थे कि ये गाना एकदम लाइट वर्डेड है, पर अगर अंतरा आप सुने तो उसमें एक हमें खासकर अंतरा बहुत बहुत पसंद है
0: जी।
1: वो हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, व्हिच इज द गिफ्ट दैट वी हैव बीन ब्लेस्ड विद ऑफ इमेजिनेशन। आई मीन दिस इज रियली समथिंग, चाहे आदमी कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, पर ही हैज द एबिलिटी टू बिकम अ शहंशाह या राजा ऑल्सो, दैट वॉज वन ऑफ इट। और ये तो जो गाने आवारा हूँ और मेरा जूता है जापानी बिकेम सो पॉपुलर, इनफैक्ट दे मोल्डेड राज कपूर्स इमेज। एंड राज कपूर जी ने किसी इंटरव्यू में बाबा के कई गुजर जाने के कल कई साल बाद ये कहा कि मेरी इमेज का जो क्रिएटर है वो शैलेंद्र है। आई मीन ही इज़ द वन थ्रू हिज सॉन्ग्स एंड वर्ड्स हु हैज क्रिएटेड माय इमेज, एंड सो ही appreciated whatever Baba had done or and acknowledged it, which is so important. As time went by, जो हमें याद है और हमने अपने आँखों से देखा और कानों से सुना, बाबा को राज अंकल हरदम कविराज कहकर बुलाते थे, कविराज, और उनको अगर कविराज नहीं तो मैं उनको पुष्किन, जो फेमस रशियन पोएट हैं, वो नाम देकर भी पुकारते थे। तो मतलब कविराज और या पुष्किन
0: जी। तो कविराज की रचना मेरा जूता है जापानी, ये सुनते हैं हम।
1: हाँ जी।

0: तो मनोज जी, जो ये गाना हमने सुना और जितने भी गाने हम सुनते हैं, तो जब मैं छोटी थी तो हम तो फिल्में नहीं देखते थे और मुझे तो पर्दे पर क्या चल रहा है पता भी नहीं था। मेरे लिए तो बस कविताएं थी जो शैलेंद्र जी ने लिखी थी और पिताजी ने बस वही समझाया था, वही सिखाया था। तो ये जो वजूद है उनके गानों का, कि जो फिल्म के सीन से हीरो हीरोइन को निकाल देने के बाद भी अपने आप में संपूर्ण कविता जिसे हम कह सकते हैं, तो वो पहले से ही लिखते आए, कवि ही रहे, कोई इंस्पिरेशन, कोई चीज़ आप हमें बताना चाहेंगे उस दौर की?
1: बाबा मतलब पहले से ही, जैसे हमने बताया, कविता तो लिखते ही थे, गाने का दौर तो बाद में आया, पर ही वॉज ऑलवेज अ पोएट। बट एक तरह से उनको थोड़ी इनजस्टिस हुई, क्योंकि गाने जो लिखते थे, अनलाइक जो आज हो रहा है गानों में, आप लिरिक्स सुनेंगे, इट इज़ ओनली विद द सिचुएशन ऑफ अ फिल्म। पर इन बाबा केस इट इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि जैसे कि अनाड़ी का गाना, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी हो होशियारी, ये फिल्म के पिक्चराइजेशन और स्टोरी के हिसाब से तो इट गोज वेरी वेल, वो तो है ही है। पर अगर आप एक एक अंतरा सुने इसमें, उसमें काफ़ी

0: में हम लोग एज अ फैमिली या इंडिविजुअल या मी एज अ बॉय और चाइल्ड, हम लोग कई बार गए और अटेंड किया है हम लोग ने. सो ही केप्ट हिज रूट्स एज अ पोएट डिस्पाइट द फिल्म लिरिक्स दैट ही वाज राइटिंग.
1: या और शायद वही सबसे खास बात है कि इतने कमर्शियलाइज्ड इंडस्ट्री में भी अपना जो अपनी गाने की आत्मा है और जो वो कवि थे वो उन्होंने हमेशा ही बनाए रखा हर गाने में.
0: आप ये देखो ना कि राज कपूर के साथ ही आई मीन नॉट ओनली हिम, मतलब शंकर जयकिशन, हसर जयपुरी ऑल्सो, दे वर ऑन अ फिक्स्ड सैलरी. और बाबा की सैलरी थी राइट टिल द टाइम ही डाइड 500 रुपीज पर मंथ.
1: Really?
0: और आउटसाइड राज कपूर्स फिल्म, आर के फिल्म, आई मीन ही वॉज मोस्ट वन ऑफ द हाईस्ट पेड लिरिसिस्ट एट दैट टाइम. आई थिंक उर्दू राइटर्स में साहिर लुधियानवी थे और हिंदी में तो बाबा वॉज नंबर वन एंड ही कमांडेड अ वेरी गुड प्राइस. तो इट इज नॉट अबाउट मनी, ये जो 500 रुपए हम बता रहे हैं सैलरी, पर आप राज कपूर जी के फिल्मों के गाने सुने, ही इज गिवन हिज बेस्ट वर्क्स फॉर हिम. और विदाउट एंड द मनी इज नॉट एन इश्यू ओवर हियर. सो इट्स नॉट because of commercial, he's not trying to make money or something, but he wants to give his heart or the very best that he can think of.
1: Definitely. Sab kuch sikha humne, na sikhi hoshiyari. Ye sach hai duniya walon ke hum hai anaadi. To chaliye, wahi sunte hain hum, Baba ke liye.
0: Okay.

0: हमें लगता है कि ये कॉम्पोजिशन बाबा की ही होगी, क्योंकि और फिर एक दो बीघा ज़मीन का भी एक गाना हमें याद नहीं आ रहा, पर आई थिंक उसमें भी आई हैव अ फीलिंग दैट देर इज़ अ टच, बिकॉज हम रिलेट करना चाह रहे हैं कि जो हमने देखा है बाबा को गाते हुए स्टेज पे अपने कविता, उसका कुछ हमें लगा कि उसमें कुछ देर इज़ सम टिंज ऑफ हिज रेसिटेशन ओवर देयर. तो हो सकता है कि ही मे हैव नॉट कंपोज्ड, पर ही मे हैव डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू गिविंग सम आइडियाज और पुशिंग इट फॉरवर्ड. तो और जहाँ तक 99% ऑफ द टाइम द सॉन्ग्स आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ द फिल्म, पर हमने एक वहीदा रहमान जी पर एक रेट्रो प्रोग्राम हुआ था सियाटल में कुछ साल पहले
1: जी.
0: तो उन्होंने वहीदा जी ने ये बताया, आई मीन विच आई डिडंट नो, कि वो जो गाना है गाइड का सीजंस पे बेस, हमें याद नहीं आ रहा, तो उस जब देवानंद ने देखा कि इतना गाना इतना अच्छा है और इतनी जी. अच्छी तरह से पिक्चराइज हो गया है,
1: हाँ.
0: तो ही फेल्ट काइंड ऑफ थ्रेटन्ड, कि उन्होंने बोला कि नहीं, इस हमारा एक गाना हमारा भी होना चाहिए पिक्चराइज्ड ऑन मी. तो दिस इज वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स वेयर अ सिचुएशन हैज बीन क्रिएटेड फॉर अ सॉन्ग फॉर देवानंद. क्या से क्या हो गया बेवफा. सो दैट वाज अ फॉलो अप एज पर वहीदा रहमान जी की, ये ही डिडंट वांट टू बी ओवरशैडोड बाय द एक्ट्रेस, सो ही गॉट अनदर सॉन्ग ऑन हिम पिक्चराइज. सो आई मीन जनरली दिस इज इट, कि सिचुएशंस होती हैं एंड गाने आर सॉन्ग्स आर रिटन ऑन दैट. मेलोडी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और up to I would say, I mean this is my view, okay, it's not anyone else's view, ki up to early maybe late 70s tak there was little bit of melody, but after that today I mean I don't see melody, I see the stress is more on rhythm. Jo gaane logon ko pasand aate hain because of the rhythm, they are there for a few months, weeks, whatever, uske baad they fade out. पर अगर आप पुराने गाने सुने तो बिकॉज द मेलोडी इज सो स्ट्रॉन्ग, द वर्ड्स आर सो अट्रैक्टिव, दे स्टैंड आउट टिल टुडे. और लोग, आई एम सरप्राइज्ड कि जैसे हमारी बेटी पूजा है, आई मीन शी इज बॉर्न हियर, आई मीन हैज नो नॉलेज ऑफ हिंदी फिल्म एज सच, पर उसको पुराने गानों से बहुत लगाव है और उसको पसंद आया. तो हम सोचते हैं कि I mean, has to have, there must be something good about those songs ki aaj tak she's also appreciating, although she's totally not connected with India in that sense. So, I have met over, especially in the last few months, a lot of young girls and boys jo gaana gaate hain aur gaana gaane ka shauk hai और उनको पुराने गाने बहुत पसंद है और वो पुराने गाने ही गाते हैं. तो आई मीन आई थिंक द मेलोडी इज व्हाट इज कीपिंग ऑल द ओल्ड सॉन्ग्स अलाइव.
1: जी, मेलोडी, वर्ड्स, जिससे लोग अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं और अभी भी वो रेलेवेंट लग रहे हैं यंग जनता को.
0: हाँ, डेफिनेटली, आई मीन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर.
1: तो इन आइकॉनिक बातों के बाद एक आइकॉनिक गाना हम सुनते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार.

0: तो मनोज जी, संगीत की बात हो, गानों की बात हो, तो एक ऐसा नाम जिनका नाम लेकर ही मैं तर जाती हूँ, लता दीदी। और आपने तो करीब से देखा होगा, जाना होगा, सुना भी होगा, उन्हें रूबरू हुए होंगे, तो उनके बारे में कोई याद या उनके और शैलेंद्र जी के बीच का इक्वेशन या कुछ भी आपको ऐसा शेयर करना चाहें आप?
1: नहीं, इतना हमारे को मौका तो नहीं मिला। हाँ, रिकॉर्डिंग्स पे हम उनको देखते थे
0: जी।
1: पर शी वॉज क्वाइट क्लोज टू द फैमिली, मतलब मदर के साथ और बाबा के साथ, तो ऑफ कोर्स बहुत ही करीब से उन्होंने कई गाने गाए हैं, नॉट ओनली फॉर शंकर जयकिशन बट लॉट ऑफ अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स। तो और उन्होंने कई बार एक्नॉलेज भी किया कि ये जो उनकी एसोसिएशन थी शंकर जयकिशन के साथ, ऑब्वियसली विच मीन्स शैलेंद्र हंसल जयपुरी टुगेदर, तो दैट हैज़ मोल्डेड हर। आई मीन दे रियली मेड हर व्हाट शी वाज एक्चुअली। द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन वाज थ्रू देम, क्योंकि उसके पहले बरसात के पहले म्यूजिक डायरेक्टर जो काफ़ी पॉपुलर थे वो नौशाद साहब थे
0: जी।
1: और पर अगर उनकी और उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्मों में गाने दिए और सो ऑन, बट द चेंज विच शंकर जयकिशन ब्रॉट इन टू द फिल्म्स वॉज डायनामिक। आई मीन दे वर रियली अहेड ऑफ दैट टाइम।
0: और मैं जब आपसे बात कर रही थी कल, तो आपने लता जी के जब गानों की बात चली तो आपने कहा था एक गाना आपको बहुत पसंद है, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म।
1: हमें हाँ, ये गाना आई मीन आई रियली रियली लव दिस सॉन्ग, क्योंकि इसमें बाबा जो ये गाना इज़ वेरी रेलेवेंट विद द फिल्म सिचुएशन, यू नो जो कह रहा हूँ देयर इज़ नॉट इनफ टाइम टू गिव द स्टोरी ऑफ द फिल्म, बट जहाँ तक हमें याद है वो दिल अपना और प्रीत पराए फिल्म थी और उसमें दिस सॉन्ग हैज द वर्ड्स आर वेरी रेलेवेंट विद द फिल्म। बट अगर इसी गाने को बाहर निकालें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिल्म, जहाँ एक अंतरा है जो किसी के साथ तुम नया जहाँ बसाओगे,
0: किसी के इतने करीब कि सबसे दूर हो गए।
1: हाँ, तुम मतलब आई मीन इट इज़ सो रेलिवेंट। और एक दूसरा भी एक अंतर है कि कुछ धुआं उठा चिराग से के ख्वाब देखती हूँ मैं या जग गई हूँ ख्वाब
0: से।
1: माई गॉड, दिस लाइन इज जस्ट किलर लाइन फॉर मी एट लीस्ट। सो हमारे लिए ये गाना बहुत ही खास है, प्लीज यू मस्ट प्ले दिस सॉन्ग।
0: बिल्कुल, यानी जहाँ हम इतनी फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं वही एक रोमांस से भरा हुआ दिल, राइट? तो हम जरूर सुनते हैं, अजीब दास्तां है ये।

0: मनोज जी, मुझे लगता है कि शैलेंद्र जी जितनी सहजता से हमें समाज की ऊंच नीच समझाते थे और हंसते हंसते अपने दिल का हाल बयां कर देते थे अपने लफ्ज़ों में, उतनी ही सादगी से वो एकदम अचूक पढ़ पाते थे नारी मन को। क्योंकि जब हम गाइड की बात करते हैं और वहीदा रहमान पर जो उनके गाने हैं, पिया तो से नैना लागे रे या आज फिर जीने की तमन्ना है, तो वो तो एक कम्युनिस्ट हैं, समाज की बातें कर रहे हैं, लेकिन वहीदा का जो कैरेक्टर है, उसके दिल की जो बात है और जो मेरे जैसी लड़की के दिल की बात है, उसे समझ पाना, इतना अचूक लिख पाना, कैसे कैसे पॉसिबल था, क्या कहेंगे आप?
1: ये इस सवाल का जवाब तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम भी कभी कभी सोचते हैं कि अगर बाबा होते तो हम उनसे पूछते हैं आपने लिखा कैसे ये
0: जी।
1: पर इट इज़ एन एनिग्मा। ये गाइड फिल्म वाज अ क्वाइट अ ऑफ बीट फिल्म इन सम वेज, जहाँ देर इज अ मैरिड वुमन एंड शी लीव्स अ हस्बैंड एंड शी इज हैविंग एन अफेयर विद द गाइड, और but it was presented so well ki people accepted it, and I think guide shayad Devanand ki pehli silver jubilee film thi, he had never had a silver jubilee film before that. To aur ye jo gana hai kaanton se kheench ke ye aanchal, I mean it tells the story of the how liberated the person is feeling कि फ्रॉम अ मैरिज दैट वॉज नॉट गोइंग एनी वेयर, और एंड नाउ दैट शी इज आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेल कम्पोज एंड वेरी वेल रिटन सॉन्ग।
0: और कहते हैं ना से बिल्कुल हेवनली कॉम्बिनेशन की शैलेंद्र जी ने लिखा और वहीदा जी ने उसको इतने अच्छे से निभाया।
1: अच्छा तो... और हमें हम एक बात तो बोल बताना भूल ही गए कि
0: जी।
1: इस गाने की रिकॉर्डिंग महबूब स्टूडियो बॉम्बे में हुई थी, और हम और हमारा छोटा भाई दिनेश, हम लोग बाबा के साथ इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए गए थे। और ये गाने, हाँ, इस गाने की रिकॉर्डिंग पे लक्ष्मीकांत, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फेमस हुए बाद में, ही वॉज प्लेइंग द मैंडोलिन फॉर दिस सॉन्ग, और बर्मंदा ऑफकोर्स वॉज कीपिंग हिम इन चेक, कोई कि आप डिस्टर्ब ना करें बीच बीच में, जब वो गाने की इंस्ट्रूमेंट्स की बैलेंसिंग होती है, तो ही डिडंट वॉन्ट एनी साउंड, और उनको मना किया था हमारे को, आई नो ही काइंड ऑफ रेप्रिमांडेड हिम इन फ्रंट ऑफ, बट हमें वो ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद है, और ख़ासकर वो जो डफ जो बचता है उसमें, और वो जो म्यूजिशियन ने बजाया, और वो हम आज तक हम भूले नहीं हैं। आई रियली लाइक दिस सॉन्ग,
0: और इतनी हज़ारों बार मैंने सुना है, लेकिन आज एक नए अनुभव के साथ आपकी बातों को सुनने के बाद फिर से ये सुनते हैं गाना
1: जरूर।

0: तो शैलेंद्र जी के बारे में आज के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर साहब का कहना है, जीनियस थे शैलेंद्र। दरअसल शैलेंद्र का रिश्ता बनता है कबीर और मीरा से। बड़ी बात सादगी से कह देने का जो गुण शैलेंद्र में था वो किसी में नहीं था। शैलेंद्र का रिश्ता उत्तर भारत के लोकगीतों से था। लोकगीतों में जो सादगी और गहराई होती है वो शैलेंद्र के गीतों में थी। और मनोज जी, इस तरह की फिल्म, इस तरह के गानों की बात आए तो फिर बात आती है तीसरी कसम की। और तीसरी कसम वंस अगेन अ लेजेंडरी मूवी, गाने, कहानी, निर्देशन, किस किस की हम बात करें, आप हमें कुछ बताएं इस बारे में।
1: तीसरी कसम आई वुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉलिंग इट माय सिक्स्थ सिबलिंग, क्योंकि हमने राइट फ्रॉम द वर्ड, जो मुहूर्त था फिल्म का, उस फ्रॉम देयर टू द वेरी एंड आई वॉच द मेकिंग ऑफ द फिल्म, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कैसे फिल्म बनती हैं, स्टूडियो में कैसे पिक्चराइज होती हैं, और उसकी जो फाइनली जो पर्दे पे आता है, हाउ डिफरेंट इट लुक्स। फिर उसके बाद फिल्म का जो अब फाइनल जो एक ट्रायल हुआ था आर के स्टूडियो में, और वहाँ म्यूज़िक डायरेक्टर रोशन जी और उनके फैमिली राकेश, राजेश रोशन वगैरह सब थे, और ईरा जी उनकी वाइफ, और इस ट्रायल पे मतलब हम तो नहीं थे, पर हम गए ज़रूर थे, पर आई वॉज नॉट विटनेस टू दिस कॉन्वर्सेशन। बट बाबा ने बाद में बताया कि राज साहब ने कहा कि ये फिल्म इज़ वेरी गुड, और इसको जो एंडिंग जो है इज़ अ ट्रेजेडी एंड इट मे नॉट बी वेरी सक्सेसफुल कमर्शली, तो आप ऐसा करो इसको चेंज कर दो, तो और यू कैन रिलीज़ इट अंडर आर के बैनर टू गेट फाइनेंसिंग, ये वो। बाबा सर कि ये दिस इज़ माई कॉम्पोजिशन, एंड द फिल्म वॉज बींग एडवर्टाइज एज लव लिरिक ऑन सेल्यूलॉइड, तो बाबा थॉट ऑफ इट एज अ लिरिक, चाहे वो फिल्म क्यों ना हो, एंड ही डिडंट वॉन्ट टू बज फ्रॉम वॉट ही हैड कम्पोज्ड एज अ फिल्म, एंड और उन्होंने राजा अंकल को मना कर दिया कि हम आर के बैनर पे मैं नहीं रिलीज करेंगे, आई विल रिलीज इट ओनली एज इमेज मेकर्स जो हमारी कंपनी है, और ना तो हमें एंडिंग चेंज करेंगे, इट डजेंट मैटर, जो होगा होगा। तो द फिल्म अनफॉर्चुनेटली जो बाबा वॉज नॉट अ बिजनेस मैन, तो उस वजह से तीसरी कसम की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, ही डिडंट गेट सपोर्ट फ्रॉम एनीबडी, और दोज हू मी ट्रस्टेड देन हैड काइंड ऑफ लेफ्ट हिम एंड नॉट सपोर्टेड हिम एट दैट टाइम, फ्रेंड्स वगैरह जो, और तो ही वॉज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, ही वॉज नॉट अ बिजनेस मैन, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू, ही वॉज वेरी इमोशनल एंड वेरी वार्म पर्सन, तो ही वॉज काइंड ऑफ हार्ट ब्रोकन। और जब फिल्म तीसरी कसम दिल्ली में रिलीज हुई, ही कुडंट इवन गो फॉर द प्रीमियर बिकॉज ऑफ द लॉ सूट्स ब्रॉट ओवर बाय द डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो ही वॉज रियली हर्ट बाय ऑल दिस, एंड देन फाइनली ही पास्ड अवे। पर गुजर जाने के पहले, मतलब मे बी 3 weeks और सो, एक बार हम बाबा अकेले कमरे में थे अपने, और शाम के टाइम, और हम उस कमरे में चले गए और ऐसे बात करने लगा बाबा, पता नहीं क्यों, वाई आई डोंट नो वाई टोल्ड मी दिस, कि बेटा देखो हमारे पास आई मीन आई ओ पीपल एक्स अमाउंट, आई डोंट इवन रिमेंबर द फिगर, आई ओ पीपल सो मच मनी, पर शंकर जयकिशन टुडे, फॉरगेट अबाउट अदर म्यूजिक डायरेक्टर, शंकर जयकिशन टुडे हैव 50 फिल्म्स ऑन हैंड साइंड, अगर इस हर फिल्म में हमें एक गाना भी लिखें, आई कैन वाइप आउट ऑल दिस डेट। सो जो मिथ हैज बीन क्रिएटेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम दैट ही डाइड ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर, ये वो, आई थिंक दैट इज ऑल हम्बग, इट्स नॉट इवन ट्रू। और फिर ये हम कानों सुनी बात बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा बाबा ने बताया हमारे को, और लोगों को शायद ये नहीं मालूम है कि बाबा ने फणीश्वरनाथ रेणु जी जो राइटर थे तीसरी कसम के, उनकी अगली एक और स्टोरी पे वो फिल्म बनाना चाहते थे और उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि वो धर्मेंद्र जी को एज अ हीरो लेंगे उस फिल्म में. सो आई मीन अगर इतना फाइनेंशियल वाज प्रेशर वाज सच एन इश्यू, आई डोंट थिंक ही वुड हैव इवन अनाउंस्ड और थॉट ऑफ मेकिंग अ फिल्म
0: और प्लान्ड द फ्यूचर. या
1: तो दिस इज आई मीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो पीपल हैव बीन saying, repeating and kind of all those myths are kind of becoming reality. So it's not hamare hisab se Baba never passed away because of financial reason. I mean he had enough in his bag to overcome the the financial difficulty. However, one thing that he couldn't overcome was the loss of friends who whom he trusted so much from his heart. वो ही हमें वो गाना याद आता है, सब कुछ सीखा हमने नसीखी
0: होशियारी. और यहाँ मैं KZSU के सुनने वालों को बताना चाहूँगी कि दिस इज़ चाय टाइम और हमारे साथ मेहमान हैं मनोज शैलेंद्र जी एंड वी आर ब्लेस्ड, वी आर हम्बल्ड एंड वी आर ऑनर्ड कि आप अपना समय हमें दे रहे हैं और इतनी छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. और तीसरी कसम ये फिल्म ये गाने जैसा कि आपने कहा आपके लिए एक सिबलिंग है, हम सब लोगों के दिल के वो इतने करीब है. तो हम उससे सुनते हैं अगला गाना, चलत मुसाफिर मोहलिनोरे पिंजरे वाली मुनिया.

0: तो मनोज जी कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। बचपन से ही जो नाम मैंने इतना ज़्यादा सुना था, उनसे जुड़े लोगों से, उनके अपनों से मिलने की हमेशा हमेशा से ख्वाहिश थी मेरी, सिर्फ ख्वाहिश, उम्मीद कभी नहीं। और आपको मैं बता नहीं सकती कि ये पल, ये जो आज का एपिसोड है, वो मेरे लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। और मैं सोचती हूँ कि कितना गहरा रिश्ता है मेरा और आपका भी। आप बड़े हो रहे थे उस क्रिएटिविटी में, उनके साए में, आपके पिताजी के, जो ऐसी सुंदर रचनाएं रच रहे थे, आप गवाह थे उसके। और मैं इधर अपने पिताजी के साथ वही सब सुनकर ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ा रही थी। तो आपके पिताजी शैलेंद्र और मेरे पिताजी दिवाकर, जिन्होंने मुझे शैलेंद्र जी को बस एक कवि के रूप में ही समझाया, बताया और उनकी हर लाइन, हर शब्द को समझाया, तो उनके लिए हम अगला गाना सुनेंगे। जो आप मुझे कह रहे थे कि उनका आपके साथ जो स्टूडियो में आखिरी रिकॉर्डेड गाना था, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, दिलेक मंदिर से,
1: हाँ,
0: गाना था
1: याद न जाए,
0: याद न जाए बीते दिनों की,
1: याद न जाए बीते दिनों की। इतना अच्छा गाना है, मुझे बहुत ही पसंद है ये गाना
0: जी।
1: और हम बाबा के साथ ये आखिरी रिकॉर्डिंग थी जो हम उनके साथ गए थे
0: जी
1: ये फेमस स्टूडियो में था, तारदेव बॉम्बे में
0: जी।
1: और तब बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। आई मीन नॉट टू लॉन्ग गो बिफोर ही पास्ड अवे। तो ये और हमारी ज़िंदगी, अब तो हम यही कहेंगे याद ना जाए बीते दिनों की, अब ये तो हरदम बाबा की याद हमें रहेगी और ये गाना हमें हरदम याद दिलाएगा
0: जी। जैसा आपके लिए ये गाना इतना मायने रखता है, वैसा हम सब के लिए है, याद ना जाए बीते दिनों की। तो फिल्मी गीतों को साहित्य की ऊंचाई तक ले जाने में और उसके स्तर को, स्टैंडर्ड को बनाए रखते हुए भी लोकप्रियता की चरम सीमा तक कोई पहुंच सका है तो वो है शैलेंद्र जी, और वो भी किसी क्लिष्ट भाषा या भारी जुबान का सहारा लेकर नहीं, लेकिन सच्चे, सीधे, सरल शब्दों के तले, ऐसे कि जाकर सीधे आपके दिल को छुएं, आत्मा तक पहुंचे, रूह को जगाएं। इनके लिखे बोल अद्भुत और बेशकीमती दस्तावेज हैं हमारे हिंदी फिल्म जगत के इतिहास के, और इसीलिए आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु ने शैलेंद्र को कविराज की उपाधि से अलंकृत किया था। और जैसा कि मनोज जी बता रहे हैं कि राज कपूर जी भी उन्हें कविराज कहते थे। सजन रे झूठ मत बोल, न हाथी है न घोड़ा है, वहां कौन है तेरा ओ माझी, जाएगा कहां, नदियां फिर भी प्यासी, भेद ये गहरा, बात जरा सी, जैसे अमर गीतों के रचयिता शैलेंद्र को आज हम तहे दिल से याद करते हैं, उन्हें शत शत नमन करते हैं और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मनोज जी का कि वो हमारे स्टूडियो में आए और मेरे साथ, आपके साथ उन्होंने अपने अनुभव, अपनी बातें शेयर की। और मनोज जी, आप जाते जाते हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे?
1: पहली बात तो हम आपका आपको धन्यवाद देंगे क्योंकि आप बाबा की यादों को हरदम ताज़ा रख रही हैं और आते जनरेशंस को जो अब इस वक्त कॉलेज वगैरह में हैं उनको आप ये गाने सुना रही हैं, उनकी याद ताज़ा करके उनको बता रही हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन योर बिहाफ एंड आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई रियली मीन इट।
0: तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए याद न जाए बीते दिनों की।